मिल पीवो भाई। कई बारी मन विच आउंदा है कि बाणी नाल आंतरिक यात्रा करिए कि आ जो बाहरी साडा भेख है इस नाल जुड़िए। बड़ा वड्डा कंट्रास्ट सानू नजर आउंदा दोवां दे विच, पर जदों बाणी साडी साडी कपट खोलदी है, कपाट खोलदी है, कपट नहीं कपाट, उस वेले पता लगता है कि सारा एक कंटिन्यूटी दे विच है। गुरु नानक पातशाह तों लैके गुरु अंगद पातशाह फरमा रहे ने, गुरु अर्जन पातशाह फिर फरमाउणगे, गुरु रामदास पातशाह ते सवेरे ही लग जांदे ने आसा दी वार, हर अमृत पीने आसा दी वार विच असीं सारे गायन करदे हां। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोबिंद सिंह दसम पातशाह तक आके हुंदी है। सो उस रंग तक पहुंचदिया नित्रे ते केवल पांच ही सी ना, हजारां दे इकट्ठ दे विचों सारे नहीं सी आए, उस दे रंग विच रंगे होए। उस मंजिल तक पहुंचण दे लई सानू गुरु पातशाह फरमा रहे ने कौन, जिन्हां दे असीं पुरब मना रहे हां, जिहड़े गुरु नानक दे संग लग के उन्हां दे अंग लग के अंगद हो गए। लैणे तों अंगद तक दा सफर असीं सारिआं ने तय करना है। और किवें करना है, बाणी दीआं पैड़ां बाणी दे स्टैप्स दे उत्ते चल के, नानक अमृत मने मागे, बारी रिचुअल करदिआं करदिआं कई वारी असीं मन दी खेड़ नूं भुल जांदे हां, पर गुरु पातशाह

सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखा कियां वड्याइयां। तुद बिन सिद्धि किने न पाइया, करम मिले नाहीं ठाकर हाइया।

तिस पाछे बचरे चरिया तिन कवन कलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी।

आई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप।

होए, तू कर कर वेखह जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तेत सरवरड़ै

हमारा जमन काल सब जगत बनायु देव दैत जच्छन उपजायु आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंज

सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ।

वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद नील अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव न पावत वेदा ताका कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का कीनत नह पेव

स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्भुज कान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा शिगरी।

सकल मलेश करु रण काता जे अस दुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रच्छा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छाह चवस कै न कोई एक बार जिन तुम्हें सुभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा

न मान्यू सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यू श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहू सब तुहे बखान्यू दूहरा

पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित कर धारिया, पंच दूत दुवस कीते, काल कंटक मारिया।

प्रभ दाताओ दातार परयु जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जेहि लग पव जल तरना बिनत करूं अरदास सुनहु जे ठाकुर पावे देह दर्श मन चाओ भगत एहु मन ठहरावे बल्यो चिराग अंध्यार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म सतनाम वाहिगुरु साहिब जी।

जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ रात ना विहावी साकता जिना विसरै नाओ राती

सच्चै दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे घालिया पोहे न सकै जमकाल सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार्यो गुरु रूप सात संग जी, आप जी वडभागी हो जो प्यार भावना श्रद्धा सहित साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब दातार जी दी पाक पवित्र हजूरी दा निग मान रहे हो, लाह प्राप्त कर रहे हो। प्यार सहित संगती रूप विच जुड़ मिल बैठ के आप जिया ने अमृत बाणी दा कीर्तन सरवन कीता है। भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी अते उन्हां दे जत्थे पासों आओ समा होया अमृत बाणी दी कथा दा। पावन पवित्र मलार की वार गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे श्री कंठ तो श्री मुख तो उचारण कीती गई, जो आपां वाचते आ रहे हां। अज उसे वार दी चौदवी पौड़ी अते उसते नाल संबंधित दो श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। अज दे श्लोक पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव दातार पिता जी दे उचारण कीते गए हन। पौड़ी गुरदेव गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी है। संपूर्ण भाव समुचा भाव यही है पंचम पातशाह जी दे श्लोकां दा कि ए जीवन रूपी काली बोली रात भय तकलीफां दुखां विच ही बतीत होएगी जा हो रही है जे साडे पास सच दा प्रकाश नहीं, साडे पास प्रभु दा संग नहीं, गुरु दा मिलाप नहीं, ता ए जीवन दी रात भयानक ते दुखां दे विच बतीत हुंदी है। जिन्हां दे पास सच है, ज्ञान है, बैराग है, दूसरे श्लोक विच कृपा कीती, उन्हां दा ए जीवन इक्को जा है, दिन रात खुशियां दे विच बतीत हुंदे ने। पौड़ी विच गुरदेव पिता महाराज ने कृपा कीती है कि सतगुरु दा ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जिन्हां नूं गुरु ने त्रुट के ए दात दे दित्ती है, उन्हां दा घालिया अगे आ गया है। उन्हां दे अंदर गुरु साखी दे जोत गुरु शब्द दा दीवा बलिया है। ओ परमात्मा दी कृपा दे नाल परवान ने, वरना मनमुख शकल करके मनुख है पर बिरती करके पशु है। उन्हां दा घालिया कदी भी थाई नहीं पैंदा, ओ कुड़ियार हो करके जीवन दी बाजी हार जांदे ने। ए भाव है ना श्लोकां दा ते पौड़ी दा। गुरु कृपा करे आपां वचन दा यतन करांगे, विचारां दी आरंभता तो पहलां रसना नूं पवित्र करदे हुए प्यार सहित उचारण करो जी।

सच्चे पातशाह जी, मेहर करना, चंगे कर्म, चंगा सुभा, फर्क का बुरा ना रखो चीत, ये भी तेरे कर दिया दाता। कहते हैं दुख भूख सदमार, कोई दुख नाल कोई भुख नाल तड़फदा प्यारे, सब तेरिया खेडा ने। जन्म भी मेरे हाथ विच नहीं, मौत भी मेरे हाथ विच नहीं। कहने ने किस देश विच तू होना, केड़ी जात होनी, केड़ा पिंड, केड़ा शहर, केड़ी स्टेट, केड़ा नगर, केड़े माफियों होने, तेरे हाथ विच नहीं। जन्म भी उदाते दे हाथ विच है, मौत भी उदे हाथ विच ही है। कहने ने बस तेरे हाथ विच उद्दम है, उद्दम भी ओ करवाए, नहीं ते बंदा चंगा बनन वास्ते ना कई बारी फिर ओह जे कर्म कर जाता है जेड़े गुरु ने सानू रोकिया है। उद्दम करो करावो ठाकुर, देखत साधु संग हर हर नाम, चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग, ये अरदास है। कर कृपा वसो मेरे हृदय, होए सहाय आप मन में राम नामा जाप। महापुरुषां तो 14-15 साल दी सिख्या विच यही सिख्या लई है भी जिहो जी रील है ना, रियल भी हो जाई होवे बंदा फिर दरते परवान हो जाता है, नहीं ते बंदा अपने आप नू भी धोखा दे जाता है। पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली, राम सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने इस सोजी साडी चोली विच पाई। सब दी हाजरी दर परवान, सब दा गाया सुनिया परवान, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा।

नमः श्री गुरुदेवाय नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटावो सिमरौ जास विशंबरे कै नाम जपता गंत निकै वेद पुराण सिमरत सुदाख्यर कीने राम नाम एक आख्यर।

दे उदारु सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जिन्ना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भउ न ब्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दर गहमानी प्रभ कै सिमरन होए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुजै प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा

जन का दासन दसना प्रभु को सिमरह से तनवंते प्रभु को सिमरह से पतवंते प्रभु को सिमरह से जन परवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रदान प्रभु को सिमरह से बेमोहताजी प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता।

सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयु, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय, जय महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चल, जय मुश्किल हो वैत पारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तर, हर को नाम कूट पापर हर, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया, लाख करोरी बंधन पर, हर का नाम जपत निस्तर, अनिक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जे मार्ग जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत है पार पराही, अनिक

मैला मल कबू न धूवै, हर का नाम कूट पाप खूवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध कै संग। जे मार के गणे जाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जे पैडे महंद गुबारा, हर का नाम संग।

जय महाप्यान तप्त बहुकाम तय हर के नाम की तुम परछाम जा त्रिकामन तुझ आकर कह तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बर्तन नाम संत जना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कह नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकद साध कमात हर जन कह हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनु दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बिबेकै।

रूप रंग, हर नाम जपत कापर न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै माल कजीना, हर तन जन कुआ प्रभदीना, हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, पोत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत ऋद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है।

ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत विख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहुजतना, पुन दान हो मैं बहुरतना, शरीर कटाए हो मैं कराती, वर्त नेम करे बहुपाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास पिसर थीवे, अग्न माये हो मत प्राण, कनिक सब है वर भूम दान, न्यौली कर्म करे बहुवासन, जैन मार संयम साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, ताव भी हों में मैल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए, मन कामना तीर्थ दे छुट्टे, गर्भ गुमान न मन ते हुट्टे, सोच करे दिन स रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही का बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखे अटरे, जल तू वै बहु देह अनीत, शुद्ध का हुए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहमूच, बहुत सियान जम का पौ व्यापै, अनेक जतन कर तृष्ण न त्रापै, भीख अनेक अगनि बुझै, कोट उपाव दरगै नहीं सिजै, झूठ सुनाही उपयाल, मुह व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जमडानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मागै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै, जे को अपनी शोभा लूरै, सा संगे होम मैं चूरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरनी परै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, सा संग चाका मिटै अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा, सो गणिए सब ते उच्चा, जाका मन हुए सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, देखै सगल सृष्टि साजना, सुख दुख जन संदस्तेता, सुख दुख जन समदृष्टिता, नानक पापुन नहीं लेपा, निर्तन को तन तेरू नाओ, निथावे को नव तेरा थाओ, निमाने को प्रव तेरू मान, सगल कटा कौ देव दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जान हो आपे, अपन संगा प्रवराते, तुम रियुष्ट तुम ते हुए, नानक वर न जान सकोए, सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरया, सगल उद्यम मह उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी मह अमृत बानी, हर को जासु रसन बखानी, सगल

तुम रायंत उचेते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुम रह सूत्र तारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी

सिमरन दिन रहन वृथा बिहाय। मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन वृथे सब काम। ज्यों कृपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाऊ। नानक ताके बल बल जाऊ, रहत अवर कछवर कमावत। मनी प्रीत मुखो गंड लावत, जन नहार प्रभु परबीन। बाहर भीख न काहू पीन, अवर उपदेशय आप न करै। आवत जावत जन मै मरै, जिसका अंतर बसै निरंकार। किसकी सीख तरै संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता। नानक उन जन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने। अपना किया आप माने, आप है आप करत नबेरा। किसे दूर जनावत, किसे बुझावत नेरा। उपाव से आनव सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस भाव है तिस लय लड़ लाए, थान तनंतर रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अंग मेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ति ही अमृत खाहे, तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लाव है, तिसको सिमरत परम गत भाव है। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मने अंदर। ये प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरहु तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसै त्या कतवर लुभावै। जे प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तु सब को मानै, मुख ताको जस रसन बकाने। जे प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सुदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, नानक पत सेती घर जावै। जे प्रसाद आरू कंचन देही, लिव लावु तिस राम सुनेही। जे प्रसाद तिरा उल्ला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देही, नानक ताकी भगत करेही। जे प्रसाद आपूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों वालस की जय। जे प्रसाद शुभ हस्त सुवारी, मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना, राख प्रोय प्रभे अपने मना। जिन तेरी मन बणत बनाई, उठत बैठ सतिसै त्याई। तिसै त्याई जो एक अलख है, यहाँ उहाँ नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सा सा चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरनी की जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहे। जे प्रसाद सुने करण नाद, जे प्रसाद पिख है बिस्माल। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सह सुमाव है। सब प्रभु त्याग और कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तुता को जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू तास्यो राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सुहर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते हुए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मातु तम हुए। सर्व निदान प्रभ तेरी मया, पो कछु न किन्हु लया। जित जित लाव तित लगै हर नाथ, नानक इन कह कछु नाथ। श्लोक
अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साजना की अचर्ज कथा अष्टपदी, साध के संग मुखु।

रतन बेरा, साधक संग पाए नाम रतन, साधक संगे कुपर जतन, साधक महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साधक शोभा ब्रह्मा ही समानी, साधक संग गोचर मिले, साधक संग सदा प्रफुल्ले, साधक संगा वह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेनु, साधक संग मनोहर बैनु, साधक संग नकत हूं तावे, साध संग स्थित मन पावे, साधक संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न, साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नि बैरु, साधक संग न बीगा पैरु, साधक संग ना ही को मंदा, साध संग जानी परमानंदा, साधक संग ना ही हो तापु, साधक संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कै संग न कब हूं तावै, साधक संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त गुचर लह, साधु कै संग अजार सह, साधक संग बसै थानु चै, साधु कै संग महर पहुचै, साधक संग दृढ़ सब धर्मु, साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निदानु, नानक साधु कै कुर्बानु, साधक संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायनु, साध संग अमृत गुण गायनु, साधक संग सर्व थान गामु, नानक साधक संग सफल जनमु, साधक संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साधक संग कलुकत हरै, साधक संग नरक पर हरै, साधक संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साधक संग ना बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साधक संग सुनु हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साधक संग लगै ब्रह्म मिटा, साधु कै संग कट कर डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बखियानै, साधक उपमा त्यो गुण ते दूर, साधक उपमा रही भरपूर, साधक शोभा का नाही अंत, साधक शोभा सदा बेअंत, साधक शोभा ऊच ते उच्ची, साधक शोभा मूच ते मूची, साधक शोभा साध बनियाई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै किस बिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल रह कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौला गय तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक, ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ, नानक ज्यों पावक का सह सुभाऊ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन हुए प्रगास, जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते उच्चा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार माह,
ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कांत न पारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक और धारै जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार है, अष्टपदि मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पिख है नितर, साध की टहल संसंग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद भिखिया पर हर है, मन की वासना मन ते टर, इंद्री चित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे को वैसा परस, वैष्णो सोज सुपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वै ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ वह नाम जपावै, नानको वैष्णु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनस सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासन पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तने अर्पै विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंड जो मन प्रबुदै, राम नाम आत्म महसूदै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद प्राण सिमृत बुझै मूल, सुख मह जानै अस्तूल, चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर धारै, पस प्रेत मुगद पाथर कौतार, सर्व रोग का औकद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर करम, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस निधरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सूझी परै, सगल संगा तुम उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै,
तैसा हर्ख तैसा उसोग सदा आनंद तै नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताय साई जुगत नानको पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कर राखै तैसा तिन आऊ आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई फुन होग पसरे आप होयंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भये निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपी सर होते कई कोट

कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र बृख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सूत धार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण समृत शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जकी नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच, सब ते नेरे सब हुते दूर, नानका पलिप्त रहा परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरक निवासी, कई कोट जन्म जीवे मरह, कई कोट बहजोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय पाणा तह तह राखी, नानक सब किछ प्रभ कह हाथी, कई कोट भय वैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंति, आत्म मह पार ब्रह्म लहंति, कई कोट दर्शन प्रभ्यास, तिनको मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट किन्ने बहुपात, प्रभ ते हुए ब्रह्मा ही समात, ताका अंत न जाने कोई आपे आप, नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होव तातम प्रगास, कई कोट तत के बेते, सदा निहारे को नित्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सत सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारी, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहार ने जल थल मही अल सूर्यष्टपदी, करण करावन करने जोग, जो तिस भावै सोई हो, किन मैं थाप थापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे धार अधार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक समै रहा समाई, प्रभावै मानुख गत पावै, प्रभावै तां पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्त्री राखै, प्रभावै तां हर गुण भाकै, प्रभावै तां पत सुधारै, आप करे अपन बिचारै, तुहां सिरियां काप स्वामी, खेलै बिकसे अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहु मानुख ते क्या हुए आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इसके हाथ हुए तां सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अन जानत विखिया मैं रचै, जे जानते अपन ना बचै, भरमे भूला दै दिशतावै, निमक माय चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भग दे, नानक ते जन नाम मिले, किन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु नयावै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा न गनै जगदीश, जीव पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही सहात, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जीव, जो तिस पावे सोई गुण थियो, कबहू ऊंच नीच मह बसै, कबहू सोग हरक रंग हसै, कबहू निंद छिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश प्याल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावनहार, कबहू निर्त करै बहुपात, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पेकारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त में आवै, कबहू भला भला कहावै, जो प्रभ राखै तिव ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कह, कबहू हुए पंडित करे बख्यान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनेक जोन पर मैं परमिया, नाना

रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवै नचावे, जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबू सा संगत उपावे, उस स्थान ते बौर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंथन नाम रति करंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान श्लोक, सुखी बसे मस्कीनी आया पनिवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्ट भरी, जिसका अंतराज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाना मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस को करवंत कहावे, जन्म मर भोजन प्रमावे, तन भूमिका जो करे गुमान, सो मूर्ख कंदा अज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे, नानकी हां मुक्ता गए सुख पावे, धनवंता हुई कर गरबावे, तृण समान कर संग न जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आसु, पल पीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन में हुए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे कुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमानु, सो जन नानक दर गय प्रवान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले फिर थारे, अनिक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ख फिर अवतार, अनेक जतन करा तुम नहीं द्रवै, हर दर गय कौ कैसे गवै, आपस को जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै, सर्व की रेंजा का मन हुए, कहु नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझ दे कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए, जाबे जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत, जब लग मुह मगन संग माई, तब लग धर्म राय दे सुजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लग कूट तावे, तृप्त नायावे माया पाछे पावे, अनिक भोग बिखिया के करे, न तृप्तावे कब कब मरे, बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ वृथे सब का जय, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू कै संग, बूझे देख करे बबेक, अपहे का पहिया देख, मरे न बिन सया वै न जाए, नानक सद ही रहा समाए, आप परिसे समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ, आपकीनु अपन विस्तार, सब कछ उसका करने हार, उसते भिन्न कहो किछ होए, थान थनंतर कै सोए, अपने चलताप करने हार, कौतक करे रंग आपार, मन में अमन अपने बाहि, नान कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किन बिर लै चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बकयानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उतरण हार, संत के निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी, संत कै दुखन यार जा कटै, संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखै न कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक पीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै, संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाहि, नानक संत पावै तावै भीगत पाई, संत का निंदक मां अत ताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई,
संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर महारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया हर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत भाव है तो उसका पी हुए मुख। संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित्र, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को समत्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही टाऊ, नानक संत भावे ता होए, नानक संत भावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत कै दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोता, क्यों सास बिना मृतक की लोता, संत के दुखी की जड़ किच नाही, अपन बीजा पे ही खाही, संत के दुखी को वर न रखन हार, नान संत भावे ता ले उबार, संत का दुखियों बिल लाई, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाई, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पाव किंदर नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे के ला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माही दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रह, संत का दुखी सदमितिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दर गए मिले सुजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजा नया सा, संत का दुखी उठले निराशा, संत का दुख न तृष्टा कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए, पया कीर्तना मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई, सब कट तिसके सब तिसके ठा, सब कट तिसके उकरने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याहु सास विराज, सब कुछ वर्त तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खिलाफ करने हार, दूसरा कौन कहे विचार, जिसनों कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन शेष लोक तजो सियानप सुरजन हूँ, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए अष्टपदी, मानुक की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक भगवान, जिस कह दिए रह अगाए, बहुत न दृष्ण लग गया, मारे रखे को आप, मानु कह किस नाई हाथ, इसका हुक्म सुखोय, जिसका नाव रखंट परोय, सिमर सिमर सिमर प्रसोय, नानक बिघन लग गए कोई, पुस्तक मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुफेला कर लह जियो, नैनो फेक ठाकुर का रंगो, सासंग बिन सह सब संग, चरण चलो मारुक गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गय नान कूजल मत्था, बड़भागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, सीतन मंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने तुत कियो, सो जी जाने नाम संग, जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सास संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्योहर जन रहत, अंधिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, कुपर जे जन की आशा, तिसकी कटी तिसकी कटिय जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, सो संसुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सो दसो दसो दसी जिया, गुरु प्रसाद सबू जिया, जब देखूं तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोय स्थूल, न कि जन्म न किछ मरे, अपन चलता ही करे, आवन जावन दृष्टन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अनिक जुगत रचताप उताप, अविनाशी नाही किच खंड, तारन तार हो ब्रह्मांड, अलख पे पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदार, प्रभ के सेवक दुख विसारण,
आपे में लय कृपाल गुर का सब जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करै बिड़पागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरखो तुम कर मान जो किछ करै सुप्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाए होवै सो होए करने हार पछाणै सोई प्रभु का किया जन मीट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माय समाए हुई सोए ओए सुख निधान नूं बने आए आपस को आप दिनु मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरता जन नहारु जाकै सिमरन उदरी है नानक दिस बलिहार उस्तपदी टूटी गंड नहार गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अवनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जिस तो प्राणी लोचै कोए तिस बिना ही तेरै किछ काम गत नानक जपे कर नाम रूप तोय नाही मोह है प्रभु की जो सगल कट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस तिसका दिया दर बैत सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता वह जे को हुए बहदा तारु तिस दिन हार जाने गावारु जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को थामे थम्मन त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन ज्यो पाखान आव चढ़त रहे प्राणी गुरचरण लगत निष्ठा रहे ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन हुए बिगा ज्यो माँ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाँछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिललाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तु तिसै चितार जो कछ करे सोई सुख मान पूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लपट रे रस लोभ बिपतंग राम नाम जप हृदय माहि नानक पद सिद्धि कर जाहि जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लेहु मन मूल राम नाम हृदय में थूल लाद की संतै संग चाल अवर त्या विकिया जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजल हर दर गैस होय यहो अपार विरला व्यापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तुय तुय पियो हर प्रसाद को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बानु सा सेवा विड़पागी पाइये सा संघार कीर्तन गाइये अनिक बिगंते साधु रखे हर गुण गाय अमृत रस चखे उठ गई संतै धरे आया सर्व सुख नानक ते पाया मृत कौ जीवा लनहारु भूखे को देवता दारु सर्व निदान जाके दृष्टि माहि पूर्व लिखे का लहना पाई सब किस तिसका करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभु चीत भगत भग सुनिए ते लोए जाके हृदय को हुए सच करनी सचता की रह तो सच हृदय सत मुख है तो सची दिर सचा आकार सच वर्त सचा पासार पार ब्रह्मजन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग के चित्र गुण ते प्रपिन तिसे बुझाए नानका जिस हो वह सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख मानु की तु प्री त्याग तिस्ते पर नाही किछ कोई सर्व ने अंतर एको सोय आपे बिना आपे ताना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शन सा तेरे की चरणी पाओ नानक मन हो अनुराव मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई हो हरण परण जाका नित्र पूर जिसका मंत्र न जाना है और अनद्रु मंगल सजा कह सर्व तुख सुनिह करता कह राज में राज योग में जोगी तप में तपीश्वर कृष्ण में भोगी त्याय तय भगत सुख पाया नाम त्रिपुर का किन्त न पाया जाकी लीला की जाकी लीला की मित नाही सगल देवहारे अवगाहे पिता का जन्म के जान पू सगल पुरोही अपना सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जिनदास नाम त्या वैसे थ्यो गुण मैं जाको परमाए जन्म मरा फिर आवै जाय उच नीच के स्थान
जैसा जनावे तैसा नानक जा, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पेकरे करंग, नाना बिदकिनो विस्तार, प्रभ बनासी एक अंकार, नाना चलत करे किनमाए, पूरे अपूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समाहि समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत मूल, सत सत उत्पत्त, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नान गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाके हृदय प्रवेश, सत निरत बुझै जे कोय, नाम जपता की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिर सुकरण हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सो वरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझिया तिसाया स्वाद, प्रभ कै रंग राजन रही, गुरु कै बचन पदार्थ लही, हुए दाते दुकाटन हार, जा कै संगतर है संसार, जन का सेवक सो वट भागी, जन कै संगे किलिव लागी, गुन गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक बल पावे, श्लोका सच जुगा सच है, पे सच नानक हो सी पे सच अष्टपदी, चरण सत सत परसन हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत ध्यावन हार, आप सत सत सब धारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया, जा कर हृदय विश्वास प्रभ आया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया, भय ते निर्भउ होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहि समाना, बस्त माहिले बस्त गडाई, ताको पिन्ना कहना जाई, बुझे बुझन हार विवेक, नारायण मिले नानकेक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम खरंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की रखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रवतार है, नानक सो सेवक सा सा सुमार है, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गत मित कहे, ताकि गत मित कोई न लाके, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक उचते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दादिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल राखे, भस्म करे लश्कर कोट लाख है, जिसका सास न काटते आप, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन कर्तव पात, तिसके कर्तव्य बिरथे जात, मारन राखे अवर न कोई, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करहरे प्राणी, जप नानक प्रभ अलक विडानी, बारंग बार बार प्रभ जपी है, पी अमृत्यो मन तंत्र पी है, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किच अवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ताने, मंत्र नाम मह नाम सुमाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जस जे पा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात, करै भगता तम कै छाए, प्रभ अपने सो रह सुमाए, जो हुआ होत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानू, तिसका गुण कह कना जानू,
हाथ पैर प्रभ दसै हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की उटले मन तने अपना तिन जन देहे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख हो तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाप मिटावे हवर सयानप सगली छाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद फैरा श्लोक सतपुरख जिन जाने आ सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिकुदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै सतगुर सिक्के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिक्को नाम तन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिक्का हलत पल सुवारै नानक सतगुर सिखो जी नाल सुमारै गुर के अग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कचना जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै मन बिच सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य दास सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनिक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सह स्यानप लया न जाइये नान कैसा गुरु विडभागी पाइये सफल दर्शन पेकत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की तर गह गवे सुनकर बचन करन आघानी मन संतोखा तुम पतियानी पूरा गुरख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेख्य हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जिस पावे तिसले मिलाए जे पाए कुस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण बवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किन्हें न पाई अनिक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एव हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए इस पुरखा नाही कदे बिनाश जाखे मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेशे वको दे मोह माया कै संग न लेप मन में राखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परमो दुख तहते नासे तपत माहि ठाड वरताई अनंत भया दुख नाठे पाई जन मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे भौ चूका निरपो होए फसे सगल ब्याद मन ते कह नसे जिसका साथिन कृपा धारी साध संग जपना मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए उत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनिक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिकिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक धन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार और उपाव समीत विसारो चरण कुमल रिद में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत धन सुनचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंते का सरा कुमन बाई सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंटुट तावै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख नित बाचै मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करै भली करनी सा शोभा पजार की सरनी अनिक पावी रोग न जाए रोग मिटै हरव कद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन प्रबुद्ध हर कै नाए दा जिस ताव तावै ठाए ताको बिघन न लागे कोए जा कर दे बसे हर सोए कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ
ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸੁ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਅਤ ਬਰਗਾਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਬਿਨਾਸੀ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਿਮ ਫਾਸੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੂ ਕਾਚਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇ, ਵਾਹ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੁ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਅਨਿਕ ਭਾਵਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੰਗ ਨ ਚਾਲ ਸਥਿਰੈ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੁਤਮੀਤ ਕੁਟੰਬਰ ਬਣਤਾ ਇੰਤੇ ਕਹੋ, ਤੁਮ ਕਵਨ ਸੁਨਾਥਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਬ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਦੀ ਤਿਸ ਬੁਝੈ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੈ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੀ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਣਤ ਖੈਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨੂ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਣ ਗਾਓ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸੁਜਾਏ ਆਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਪੈਲ, ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗਰਾ ਸਰਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਛਾੜ ਸੁਜਾਨਵ ਸਗਲੀ ਮਨਾ, ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਪਾਵੈ ਸਚ ਧਨਾ, ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਹਾਰ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰ ਗੈ ਜੈਕਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਕਲੇਖ, ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾ ਲਾਹੀ, ਇੱਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੀ, ਕਿਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮੰਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ, ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰਿ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭਿਆਪ, ਅਨਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਈ, ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਗਏ ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭਰਾਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤਾ, ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਮਾਂਗੋ ਧੂਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਿਰ ਸਰਦਾ ਪੂਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਵੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਤ ਕਰੂੰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਏ ਕੋਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ, ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ, ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਪੁਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਰੇ ਸਰਨਵਾਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅੰਦਿਨ ਲਿਵਲਾਗ, ਬਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ, ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ, ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਬੰਧਨ ਕਾਠਮੁਖ ਜਨ ਭਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਇਆ, ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸਰਦਾ ਸਪੂਰੀ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖਤੀ ਕਾਢੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕਾਮ, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਵਰ ਨਾਮ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਬੂਟਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕਾ ਹੋਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ, ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ, ਮੰਤ ਨਿਅੰਤਰ ਹੀ ਸੁਹਾਓ, ਨੇਤਰੋ ਪੇਗ ਦਰ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਕਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮੰਤਨ ਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ, ਏਕ ਬਸਤ ਦੀ ਜੈ ਕਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ,
जो जो जपै सुहे पुनीत भगत भाई लावै मन हीत हम निर्गुणियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निम घर के गुण गाए अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई भो भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी सुफ तनवंत हिरदय बसे पूर्ण गुरमंत सास प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार कचन दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सो कहो किसे व्यापत जब अपन आपा पार ब्रह्म तब मोह का किसोत परम अपन खेला वर्ती जा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक हरगम पार तब नरक सुर कौ कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा बिना सुनो जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अभिगत गुचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा जब नाथ निरंजन गुचर वादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे आपन आप आपी चर जाओ नानक आपन रूप आपी उपर जाओ जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तै बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत को कीस जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावै तह किसे भूकवन तृप्तावै करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पै परबीन तै बेत देव कहा कूचीन जब अपन आपा पुरतारै तो सगन सगन कहा विचार है जय अपन ऊच अपन आप नीरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चीरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय छल छेद भेद समाया उहां किसे व्यापत माया आपस को अपया देश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कहे केक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपन आप पथियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपै पहुँचा जे आप रचियो प्रपंच कार त्यो गुण में किन्नो विस्तार बाप हुं थे पही कहावत को नर को सुरग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर दिखै खेल संकोचै तो नानक कै जय अभिगत भगत आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुहु पाका आपे धनी उनकी शोभा उनहु बनी आपह कौत करै आनंद चोज आपह रस भोगन निरजोग जिस भावै तिस आपन ना इलावै जिस भावै तिस खेल खिलावै

नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हारु आप एक आप विस्तार जा तिस भावै ता सृष्ट उपाई आपने भाणे लई समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जा

नानक सगल श्रेष्ठ का जीता, जी जंत्र सबता के हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखे तिस कोए न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस्ता जावर कहा को जाई, सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानू साथ, गुण निदान बेअंत पारु, नानक दास दा बलिहार, पूरन पूर हे दयाल, सब उपर होवत कृपाल, अपने कर्तव जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप, प्रतपालै जीअन गौ पात, जो जो रचियो सो तिसै तिहात, जिस भावै तिस लय मिलाई, भगत करै हर के गुण गाई, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक इक जानिया,

हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार चाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अंधिन पूजै गुर के पैर ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपै मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुहाओ आठ पहर प्रभिक हो नीरा मिटे ज्ञान विनसय अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हालत पलत दोए लेहु सुवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परिखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै के तुम्हारी एका ठीक रखो मन माही नानक पौर नया वह जाहि तिस्ते दूर का को जाए उपरै रखन हार त्याए निरभउ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी जुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत कुदरत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान

अष्टपदी संत संगंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक घट माही अनिक रंग

सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सह सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाणै निसाण गावै को गुण वड्याईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तानखे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट दिंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखै है मंगै है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलियै जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख दुआर नानक ए वै जानियै सब आपे सचियार थाप्या न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मन रखियै पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौं जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देहे बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीता अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय ना सूझै जे तिस गुण कोय करे सुणै सिद्ध पीर सुरनाथ सुणै धरत धवल आकाश सुणै दीप लो पाताल सुणै कोहे ना सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नाश सुणा ईसर बर्मा इंद सुणा मुख साला हनुमंद सुणा जोग जुगत तन भेद सुणा सासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुणा दुख पाप का नाश सुणा सात संतोख ज्ञान सुणा अठ सठ का इशनान सुणा पढ़ पढ़ पावै मान सुणा लागै सहज त्यान
नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है सारा गुणा की गाह, सुना है सेख पीर पात साह, सुना है अंधे पावे राह, सुना है हाथ होवे असगाह। नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंद, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावै है मूख दुआर, मन्ने परवारै साधार, मन्ने तरै तारी गुर सिख, मन्ने नानक पावै है ना भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दरगह मान, पंचा सो है दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करण नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवे सचियार, तबलै उपर किता पार, धरती होर पर होर तिस ते पार, तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया केता होए, केता तान स्वाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख ताप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे ही उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध पूर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वाड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख

किसै न भावै रखियो करे, बिसरत नाम ऐसे दुख लाग है, जम मार सुमारी नरक खरे।

जाकू हर प्रभ नजर करे, ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग में गुरु गोविंद हरे। हर सिमरहु गुर बचन समारहु, संगत हर जन पाऊ करे। हर जन गुर प्रधान द्वारे, नान

जिस नौ नदर तुम्हारी जीव रहाओ। दिव दृष्ट जागे परम चुकाए, गुर प्रसाद पर

नानक तत् विचारी जियो। मारू महला पंजवा घर तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद लख 84 भ्रमते भ्रमते दुर्लभ जन्म अब

अमृत संग बस्त है तेरा, बिख्या स्यों उर जायो रहाओ, रतन जवेहर बणजन आयो, कालर लाद चलायो, जे घर मह तुद रहना बसना, सो घर चीतना आयो, अटल अखंड प्राण सुखदाई, एक निमक नहीं तुझ गायो, जह जाना सो थान विसारियो, एक निमक नहीं मन लायो, पुत्र कलत्र ग्रह देख समगरी, इस ही मह उर जायो, जित को लायाओ तित ही लागा, कैसे कर्म कमायो, जो भयो कृपाल ता सत साध संग पाया, जो भयो कृपाल ता साध संग पाया, जन नानक ब्रह्म ते आयो, मारू महल्ला पंजवा, कर अनुग्रह राख लीनो, भयो साधु संग, हर नाम रस रसना उचारे।

सिमर स्वामी सुख सहज पुंचै नहीं अंत पारावार। अनिक प्राचुत मिट है खिन मह हृदय जप भगवान। पावना ते महापावन कोट दान इसनान। बल बुद्ध शुद्ध परा

पवित्र अपवित्र है किरण लागे, मन न भयो बिखाद। शीत मंद सुगंध चलेओ, सर्ब थान समान। जहा सा किछ तहा लाग्यो, तिल न शंका मानो।

जाने सदा सहज सुभाए चरण शरण सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाओ नानक पहे प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा घर चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

गुरु चरणी मन लागना, इह बिद तिसै प्राप्ते जाके मस्तक भागना। कहो नानक तिस सब किछ नीका, जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना। रहाओ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हिरदय वासै, दूजा भाउ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासै, दुर्मत दुख तजावना। दर्शन भेटत होत पुनीत।

संत संगत मह लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी, मन हर भगती संग सीवना, मात्या हर रस मह राते, तिस बहुड़ न कबहू उखीवना, मिल्यो तिस सर्व निदाना, प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा, चरण संत तुहे पीवना, मारू महला पंजवां घर अठवां अंजुलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद,

मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने, घट घट राम हियाली है, संसार में सहसा व्यापै, अकथ कथा आगोचर नहीं जापै, जिसह बुझाई सोई बुझै।

ओ मन माही इस ही मैं जिसकी पतरक है तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना।

आपे सारी आपे पिड़ बाधी जग खेलै आपे कीमत पाई हे आपे भवर फुल फल तरवर आपे जल तल सागर सरवर आपे मच कच करनी।

जो दिसै तुझ माहि समाना, नानक नीच भिखिया दर जाचै, मैं दीजै नाम वडाइए। मारू महला पहला, आपे धरती धौल आकाशों,

लिखै, कोई न मिटै साची लिखै, आपे करे कराए आपे, आपे दे वडियाई हे। पंच चोर चंचल चित चल है, पर घर जो है घर नहीं पाल है, काया नगर टह टह ढेरी, बिन शब्द पत पा जाई हे। गुरते बूझ है त्रिभवन सूझ है, मनसा मार मन स्यों लूझ है।

भूले चुके मार्ग पाव है, आप भुलाए तू है समझाव है, बिन नाव मैं अवर न दिस है, नाव हुग

संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रभ आपे, परम भेद पहु जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुलना कबहू।

केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सालाही अगम अपार साचे सिरजन हार मुरार, जिसनु नदर करे तिस मेले मेल मिले मेलाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार ऊभे से

दूजी दुरमत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली घर वर सहज न जाने छूहर बिन फिर नींद न पाई हे अंतर अगन जलै पड़कारे मनमुख तक्के कुंडा चारे बिन सतगुरु सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारे तस्कर पंच शब्द संगारे ज्ञान खड़ग लै मन स्यों लूझै मनसा मनहि समाई हे माँ की रक्त पिता विद धारा मूरत सूरत कर

गुरते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर दिख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है, निज कर बैस रहे पहु खाया, धावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुपार, आत्म राम सिखाई है, मरन लिखाए मंडल मह आए, क्यों रही है चलना परताए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सुबाया, जिन सिरिया तिन धंधे लाया, सच्चे ऊपर अवर न दिसे, साचे कीमत पाई है, ऐथे गोयलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा धुंदू कारे, बाजी खेल गए बाजीगर, ज्यों निस सुपने पखलाई है, तिनको तख्त मिली वडियाई, निर्भव मन वसिया लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरई, त्रिभवन ताड़ी लाई हे, साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिले सुख पावा, साचे साचे तख्त वडाई, हौ मैं गणत गवाई हे, गणत गणिये सहसा जीए, क्यों सुख पावे दू ऐतीए, निर्मल एक निर

राता। तिसकी फूट कही सुख पाया, मन तन मैल न काई हे। जीव रसायन सच है राती, हर प्रभ संगी भौ न पराती। श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मिलाई हे। रख रख पैर धरे पौ धरना, जत